0: जमुना का बोल रहा
1: था। जंगलों को जिंदगी सेटअप आहत पुकुल 5:15 मिनट petang menerusi ekspresi di Langkawi FM. Jangan lupa nak.